0: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
1: कता हिँडेको आइफोन हातमा लिएर?
2: आइफोन हो कि माइफोन, के बनाऊ? साडै नै बिग्रन्छ, के हो के हो? यतै बनाउन खोज्यौ महँगो।

0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13-424 र 9058-14-175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला दिउँसोको ठिक 2 बज्यो।
5: जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: लंच रात का खाना अगर बच जाए तो सुबह तड़का लगा के नाश्ते में दे दो।
1: वेस्ट आपको होम साइंस और रॉकेट साइंस इससे कोई फर्क नजर नहीं आता।
2: चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा।
3: गो, गो, गो, गो, गो, गो, गो, गो, गो, गो.

0: को पनि व्यवस्था छ।
1: सम्पर्क तिमसेना फ्रेश हाउस सुक्ला गण्डकी 4 पञ्चमुनि चोक तनहुँ। प्रोप्राइटर केशर बहादुर तिमसेना। मोबाइल 9811411178 9560007078।
2: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी FM 97.6।

0: एक नया प्रोडक्ट है।
1: तो बोल रही थी टॉप फ्लोर पे पहुँच जाती है, क्या जरूरत है?
0: ये ना टॉप से भी टॉप फ्लोर पर पहुँचाता है।
2: उस दिन मेरा छोड़ा हुआ तीर मेरी ही गांड में आके घुस गया था।

दूसरे योयो के गानों के लिए तो आप भी इंतजार जरूर करते होंगे, खासकर योयो के पार्टी सॉन्ग्स का। तो इससे क्या पिछले काफी समय बाद योयो ने एक बार फिर से अपनी शानदार वापसी की और योयो के गाने अब हमें काफी धमाका करते दिखते हैं। वो इस तरह से मैं योयो के

0: के लिए एक बड़ी गुड न्यूज और वो है कि यो यो हनी सिंह का एक पार्टी सॉन्ग जल्दी आने वाला है जो कि कई बड़े बड़े धमाके करता दिखेगा। दोस्तों जॉन अब्राहम की आने वाली मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी पागलपंती में आपको हनी सिंह का एक लाजवाब सॉन्ग दिखेगा और इस सॉन्ग का नाम होगा ठुमका। जैसे हनी सिंह के पिछले गानों की तरह ही हनी सिंह के नए गाने का नाम भी काफी लाजवाब है। तो यहाँ ठुमका एक मल्टी स्टारर पार्टी सॉन्ग है जिसमें आपको जॉन अब्राहम, लियोनार्डो डिक्रूज, अरशद वारसी, पुल के सम्राट कृतिक अरबंदा और उर्वशी रौतेला जैसे स्टार दिखेंगे और इस सॉन्ग की शूटिंग कर ली गई है। साथ ही सॉन्ग के शूटिंग लोकेशन से फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने एक लाइव वीडियो शेयर किया जिसमें हमें ठुमका सॉन्ग के कुछ लिरिक्स सुनने को मिल रहे हैं। साथ ही फिल्म के सारे स्टार दिख रहे हैं।
1: नहीं हुआ है क्या शूटिंग फॉर ठुमका बाय योर हनी सिंह?
2: ये देखिए जॉन अब्राहम ये शूटिंग
3: बन गया।
2: थैंक यू इकराम, थैंक यू। हाँ अभिषेक है, जॉन है। आई लव यू जॉन, was so nice to see you.
4: Let's not get high.
5: Oh, don't do that. I look weird.
4: I don't think this is a good angle for me.
0: तो यह ठुमका सॉन्ग के छोटी सी झलक को देख के लग रहा है कि यह सॉन्ग काफी कमाल का होगा। साथ ही इस सॉन्ग के लिरिक्स काफी कमाल के लग रहे हैं। तो जो 8 नवंबर को जॉन अब्राहम की पागलपंती आ रही है, मैं इस तो आपको बता दें कि पागलपंती के कुछ ही दिनों पहले आपको अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 देखने को मिलेगी। तो इसमें दो बैक टू बैक मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी, फिर अक्षय कुमार की हाउसफुल 4, फिर इसके बाद जॉन अब्राहम की पागलपंती। तो इसमें जॉन अब्राहम की पागलपंती काफी कमाल की होगी, खासकर फिल्म का सॉन्ग ठुमका तो आग लगातार दिखेगा। तो यहाँ यो यो हनी सिंह एक बार फिर से अपने कमाल के सॉन्ग ला रहे हैं और जल्दी आपको पागलपंती में देखने को मिलेगा यो यो हनी सिंह का एक खास सॉन्ग और इस सॉन्ग का नाम होगा ठुमका और उससे ये सॉन्ग काफी कमाल का होगा। और उससे आप यो यो हनी सिंह के आने वाले सॉन्ग ठुमका के लिए कितने एक्साइटेड रहेंगे हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।

नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज विक्रम सम्वत 2083 साल भदौ महिनाको 9 गति मंगलबार श्रावण शुक्ल द्वादशी अंग्रेजी मिति अनुसार अगस्त 25 तारीख सन् 2026 नेपाल सम्वत 1146 सूर्य बिहान 5:40 र सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। बिहानी शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ, म राजन उपाध्याय। समाचार शुरू गरौं यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट।